जब मॉम डैड की कोई लव स्टोरी ही नहीं थी तो गाने का थीम क्या था? ऐसे अनरोमांटिक कपल के लिए क्या गाना बनाया गया और कैसे लगते होंगे ये सब लोग उस जमाने में?